गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने, जेड़ा आके उन्हें सत्संगिया च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहा है, प्रभु जस मान रहा है। और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना कहावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे। ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां। जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणां दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लैंदे ने, रंग च रते होए।

संसार विच जाके संसार दे सुख नहीं मंगना चाहुंदा। मेरी तुसां ड्यूटी लाई है कि उस मात लोक दी धरती दे उत्ते जाके वध रहे जुल्मां नूं ठल पाउणा है कि हे मालक हे अकाल पुरख मेरे ते कृपा करनी, मेरे विच ए शक्ति पाउणी। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने हे रब हे सस, सतगुरु जी उस अकाल पुरख दे नामां नूं अनेकां तरह बयान करदे ने। जिदां आपां इक पंक्ति श्रवण कीती है कि संत सहाए सदा जगमाए कृपा कर श्याम, यह वर दीजै सतगुरु जी मैनूं यह वर देना कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। आख्या सतगुरु जी मेरे विच हे रब उस चंद्रमे दे मुताबक उस सूरज दे मुताबक, रब आखदे ने सूरज नूं कि सतगुरु जी हे अकाल पुरख उस सूरज दी पां गर्मी भी होवे जोश भी होवे, हे सस उस चंद्रमे दे तरह शीतलता सा सुभाव भी होवे ताकि मैं डिग्गिया होया नूं चुक के गल नाल ला सकां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख दे पावन पवित्र चरणा विच जोदड़ी करदे होए ए मंग मंगदे ने कि जब आओ कि औद निदान बनाए अत ही रण मैं तब जूझ मरो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दा टीचा ही सी कि देह शिवा भरम होए ए है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख तो ए वरदान लिते ते इस मात लोक दी धरती दे उत्ते आके जुल्मां नूं ठल पाया ते डिग्गिया होया नूं चुक के गल नाल लाया, गरीब दे रक्षक बने दीन दे रक्षक बने। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दे उचारण किते होए सवैये दे नाल असीं खालसे दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हां।

ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਲੋਹੇ ਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਸੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਮੂਲੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਮੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਮੂਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ। ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ। ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਲਾ ਬਨਨਾ ਹੈ, ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਭਲਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਅਛਿਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਬਨੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाया। मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे? देखना, इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा? जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया? अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे? पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना, मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है? क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे? वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की जुगती बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

इस धरती के ये बूटे हैं और कैसा बगीचा है, हर बूटे को फल लगता है। इसमें कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल ना लगता हो, और सब बूटों को एक जैसा फल लगता है। सब ना फल लागे नाम एको, आखो वाहेगुरु। सगली फूली निफल ना काई, कोई ऐसा बूटा नहीं जिसको फल नहीं लगता। सारी वनस्पति गुरु के बगीचे की फलती है, फूलती है, वो कैसी धरती होगी, कैसा बगीचा है। और गुरु माली एक भरोसे में है, कैसा भरोसा। गुरु माली का ये भरोसा है, जैसा ये बूटा है, जैसा मैंने बीज बोया, जैसी मैंने क्यारी लगाई, उसको फल ऐसा लगे, उस फल में मुड़ के उस फल में मैं देखूं, वैसे ही बीज को जैसे बीज ने यह फल पैदा किया है। सात संगियों में गुरु का भरोसा है, गुरुमुखों में गुरु का भरोसा है कि गुरुमुख को ऐसा फल लगेगा जिस गुरुमंत्र से, गुरु शब्द की कमाई से इसको फल लग रहा है। जब फल लगेगा उस फल में, गुरुमुख में ही ओ सच गुरुमंत्र, पार ब्रह्म का मंत्र, गुरु शब्द का सार प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह भी सामने एक बात दिखाई देती है, जो धरती है, धरती में जो बीज बोया गया है, धरती ने कभी झूठ नहीं बोला। आखो वाहे गुरु, धरती झूठ बोलेगी भी नहीं, कभी भी धरती झूठ नहीं बोलती। धरती कभी भी झूठ बोलेगी नहीं, जैसा बीज आपने डाला है, जब ये धरती अपना मुख खोलेगी, बता देगी आपने क्या बीजा है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक बीजें, आप बोलें मैंने अमृत बीजा है, आप जो मर्जी बोलें, जैसा चाहे बोलें, लेकिन जब धरती ने मुख खोलना है, प्रकट कर देना है आपने क्या बोया है। धरती ने झूठ कभी नहीं बोला, ना बोलना है। जो बोया गया है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही सत्संगत रूपी धरती जहां गुरमुख पैदा होते हैं, वो भी झूठ नहीं बोलती। आखो वाहेगुरु, जैसी कोई भावना लेकर सत्संग में आता है, वो प्रकट कर देती है। कोई भी भावना लेकर आओगे, वो प्रकट कर देगी। आप क्या बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। लेकिन धरती ने तो वो बोल देना है जो आपकी भावनाओं में है। आखो भाई, धरती में कभी डाला हुआ बीज धरती की हिक पर नहीं फूलता जितनी देर तक धरती के सीने में ना चला जाए। आखो भाई, धरती के ऊपर बीज डाल देना ही काफी नहीं, बीज तभी ही फूलेगा, पुंगरेगा जब धरती की कुख में चला जाएगा। वैसे नहीं, जे धरती की कुख में बीज आकर पुंगरता है, ऐसे ही सत्संग में आ जाना, बैठ जाना, उठकर चले जाना ही काफी नहीं, जितनी देर तक आकर बैठने वाले सत्संगत रूपी धरती में सत का संग नहीं करते, उतनी देर तक ना फूल सकते हैं, ना फल प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बैठना ते उठना ही सत का संग नहीं होता। सत का संग तो वो है, आपने यहां पर आकर सत का संग भी करना होगा, अपनी सुरती को ऐसे गुणों में लगाना होगा जो सत्स्वरूप गुण है, जिन गुणों से हमें वो फल प्राप्त होगा

इस फल की बात सतगुरु ने की, विण गुण कीते भगत ना हुए आखो वाहेगुरु। पवित्र बाणी में एक शब्द में ऐसा बोला, कैसा? आप सारे रल कर आओ शब्द गायन करें।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख, तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधिया विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ, दुनिया दे सुख, ए टुटे हुए कच दी दियाई हन। जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन, आ वेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना ले जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ, जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके ले जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला, उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है, अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या, ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना, बड़ा बलवान समझना, भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन, ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन, जदों एक धनवान गुजर गया, शरीर छड़ गया, ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना, ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया, ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के, जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो, लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई, नाल की जाएगा? हजूर कहंदे नाल इना जेड़े अमोलक श्वास तेरे हन, इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन, बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल ता एक सुई भी नहीं जानी, ते तू इना धन कट्ठा करी फिर दे। कहने लगा महाराज कृपा करो, मैं बड़ी औखी कमाई कीती है, ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल ले जावा। हजूर कहने लगे भाई नाल ता ले जा सकना है तू, जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहने लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़वंदा नूं वंड दे उहदे नाम ते, ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री, इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन, ओ मित्रा धन ता तू नाम दा कठा करना सी, ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोती नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

सत्संगियो कीर्तन दी एवी एडी उस्तत नहीं कीती। जे कोई मन ला के कीर्तन सुने ना ते भाई गुरुदास जी किड्डी सोहनी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कर रहे ने। राजा हरिचंद इनू कीर्तन नाल कोई लगाओ नहीं, सारा दिन राज भाग दे कार विहार करता है, विशे वकारां वल लगा रहिंदा है। पर इहदी राणी जिहनू कीर्तन नाल बहुत प्यार है, इहो जिहा समां बणिया महलां दे नजदीक ही एक महापुरशां दी मंडली आई, देड़ी रहन सवाई कीर्तन कर दी है। पाव रात

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इने सोचिया भई हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दी उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ऐ मेरा है, ऐ मेरा है, ऐ मेरा है। लेकिन साहिब कहंदे ने ऐ मनुख ऐ बंदिया कदी ये भी आखें कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ते तेरा दिता हुआ शरीर है। तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। तो जदों तू चाहे चलते हुए श्वासों संगल पा के रोक सकना है। तो फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब दिसदा सब किच है तेरा।

जीओ पेंड सब दिसदा, सब कुछ है तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सारे आंखों तेरा।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता, कहिंदा वाह, बड़ियां बड़ियां कीमती चीजां मेरे खुदा तू छुपा के रखी हैं ने। बोलो सिरे, कहिंदे मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए, हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर, हाथी घोड़े लश्कर, बड़ा कुछ। एक दिन बैठा है, हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला फड़ी, बड़े कीमती पत्थर दी, मोतियां वाली माला घुमाउंदा घुमाउंदा, इहदे मन विच आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दित्ता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा कीता है। बोलो सिरे, मैं आ गया, कहल करना, ओही मैं।

इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी। पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वाल आया ताकि देखदा है एक आदमी सोता पे ते पैर उस दे मेहराब वाल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वाल मुंह करके पढ़दे हन। मक्के वाल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नु गुस्सा चढ़िया ते आके उस सुते आदमी नु लत मारी ते कहा तू कौन है जो खुदा वाल पैर

काम अग्नि दे भांबड़ तो मन बचाओ ते शीतल सुख दा जानो हो। इउं कर बंदगी रोजे रख ता तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकन दी सलाम कीता आख्या वाह वाह अज खुदाए

दुनिया दा असर डाढ़ा है, खुदा किस तरह मिलता है, ते सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है। जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उच्चे हो गए ते डाढ़े मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो। यक अर्ज

नाने की गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैर।

ना तो केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन। जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करदे हो।

0: ना ही नदियां विच पानी वगदा सी।
1: खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाईदा ना तद सुरग मच